0: बहुजन जनक धनुष कही तोरा।
1: अरे बहु धनु ही तोरे उलरिकाई कब हुन असरिस की न गुसाई।
0: मेरी पवार कालवस बोलत तोही न सभा धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कौशिक सुनो बंद ए बात कुटिल कालवस निज कुल घाल तुम हट कहु जो चाह उबार कहीं प्रताप बल रोष हमारा।
1: सूर समर करनी करही कहीं न जनाब ही आप विद्यमान रण पायन कायर करही प्रलाप। सुनी कटु वचन उठार सुधार करहु बालक पर छोहु सूद दूद मुख करी न कोहु जो लड़िका कछु अनुचित करही गुरु पितु मा तुमो तो मन भरही।
0: बंधु का है सब सम्मत तोरे तू चल विनय करसी करु जोरे करि परितोष मोर संग्राम नाहित छार कहा उबराम।
1: नाम मात्र लघु नाम हमार परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुल ही प्रसंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी। विप्रवंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डराई।
0: सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उगरे पटल पर।